0: 기타 쳇리 보고 소리는 코가 파여리 단다 보고 거의 스카스리 녀켈링 마시
1: 텐다디 바베 하고 마지 하고 비이너 바베 싱카리 깁 조이나
0: 도시 아자 문예 당 샤관 라다 대수 인교 식규 근저도
1: 딘제시네 켜야 마지 조상게 샤관이 뒤이너 가바이네 제 도시
0: 어 야면 그저시가 ये शौकान दा केसी सेवा बुदी हनी खप सुनसा रंग जिसी दी समसी थुसी
1: चांगु से ने ये शौकान टीम का से सेपी इने चोस मिदु
0: जो चांगु जिसी दुए
1: दिजे सिंग मिदु इने बुगु सिमना थे जुम सिरा केसा
0: शौकान के चुंदी ने पाप थुन्यु यो मासी ये चेन कोमदे हसी
2: yīnē dī bāba nāwā mēyabdā yāngzē mēkīb sī mācī xiaoganda kēzī mācī nēnī xīngī sīm tūshī rāyō shī ngā zui tāpār zhūk xiāng xībā ngū zī jīguā shī tāntu lūbū tō piār tūyō nā xiaoganda dī mēkīb yōng gō chūng
1: būgū sām dī rētā nē tāp sī yō mācī lēmbā sāng mō ngā rā yū xiaoganda būgū sām sī tō nē shī cāng mū nē kā tī nī kā shī nī xie kō lō
3: 周祥也小刚才见我这下小刚也怜悯度一年我从那度小刚心哪把不过去和生病不过我的宁夏啥事阳光明是你不的呢我自己心里也见不着些我也估计碰去过生活呗 Gush, nyeran simtusna lelabu shihmi, dem dushi. Ah, yuwa, yu, todo arashi damga jishta.
4: Da range shirhatunsu, nyel kalasu, tungmari.
3: Ah, si, ran gyusu di gyushi, chome mashe da, nga lu yisim shtuyam shu, gyos gyu.
5: Kachida!
3: Rai na, kiondor shtu, dechi shu! De, chi debari mudu gai? A, rani kalay di chigyabu du gai? Rani la yu ca la ni, shidam kapshu sheba le, kalay shivu shigi. Sushu da, nyesh deo. 出血的 라마쇼 这妈妈都是恰恰 天哪,三爷可留的
4: 你懂了是的 那不得这些 那多年恰比 让你给不给你们读的
3: 玉华 让我那多年恰比呢 Nyerang da kama jebche, rang la kao chigri. Unhe che na, ngai minyam chu nye chirisha. Nye san ta chigdo da.